उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

Righto, in the name of Allah, the merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, and of course, assalamu alaikum, ahle Pakistan. Janab se mukhatib aapka host, aapka dost DJ Sahil signing in. Alright, janab, kaise hain aap tamam log? Ek din theek jaake hamare fit hain. Hum maze mein hain, khoob enjoy kare apni zindagi ko. It's 8:26 on the dial, ladies and gentlemen. Today is 10th of October 2026. Kaise hain janab? Kaisi guzari aapki zindagani? Aur kya chal raha hai aapki life mein? अगर आज आपका बर्थडे है ना तो मे यू हैव मेनी मेनी मोर. क्या बात है जी, आज के दिन के अगर आपका बर्थडे है तो बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं तमाम लोगों के लिए. जी बिल्कुल, आपको इंतजार होगा कि रिबेका अब्दुल जो है उनकी आवाज जो है वो नहीं आ रही है. अभी तक वो स्टूडियोज में आई नहीं है, आई हैव नो आइडिया, उन्होंने बताया भी नहीं है. लेकिन जब वो नहीं आती है ना, वो बता देती है. तो मे भी हो सकता है रास्ते में हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक जो है उसका वो थोड़ी सी जो है वो ट्रैफिक की रूटीन चेंज है. आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा रास्ता बदल कर आना पड़ रहा है. तो मे भी हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा कहीं स्टक हो गई हो. लेकिन अभी तक कोई इत्तला नहीं है कि उन्होंने आना है कि नहीं आना है, बताया नहीं है. वैसे नहीं बताती तो वो आती ज़रूर हैं. बारल जी, 111 इज द नंबर, 9202540 इज द नंबर, 051 का इजाफी कोड रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो दूर रहते हैं उन तमाम लोगों के लिए, शहर से बाहर वालों के लिए. आपकी कॉल्स को बैक टू बैक प्रोग्राम में शामिल करेंगे और खूब सारी मस्ती होगी, खूब सारा फन होगा, ओनली ऑन एफएम 101 होगा. अब ये लड़की आए तो हमें पता चले कि इसने आना है कि नहीं आना है, कुछ बताए हमें, क्योंकि हम फिर पोस्ट लगवाएं, है ना. तो हम एक काम करते हैं, अच्छा से गाने से आगाज कर लेते हैं प्रोग्राम का, उसके बाद लौट के वापस आएंगे. सो हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, द फर्स्ट ट्रैक ऑफ द शो इज

से ये डिसाइड करना ना सुबह सुबह बहुत मसला हो जाता है कि पहला गाना कौन सा प्ले किया जाए, जिससे आपका मूड जो है ना वो गार्डन गार्डन हो जाए आपको, है ना। अच्छा कहते दिल गार्डन गार्डन होने चाहिए ना, बाग बाग होने चाहिए, मूड आपका खुशगवार हो जाए, ये अच्छी बात है। आइए, मौसम खुशगवार है, बड़ा प्यारा मौसम है, थोड़ी सी पतंगे उड़ा लेते हैं, हालांकि वेरी बैड, नहीं उड़ानी चाहिए, लेकिन चूंकि गाने में फरिया परवेज जो है वो इसका बखूबी मुजाहरा कर रहे हैं कि हमें जो है वो पतंगबाज सजना से मिलना है। सो हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, द ट्रैक इज पतंगबाज सजना बाय फरिया परवेज, इट्स 8:29 ऑन द डायल, हमारे साथ रहिएगा।

0: FM 101. Abalı balı çabuk çabuk.
1: Righto, आप सुन रहे हैं 101 अबले बले शावा शावा 111111 is the number. आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. And I'm waiting for your calls. और कॉल आ रही हैं, लेकिन फिर वही मामला हो गया. मेरे ख्याल से रिफ्रेश करा लेते हैं एक्सचेंज को, ताकि इजीली हो जाए ना. अरे वाह, ये कौन आ गया सुबह सुबह? हेलो
2: हेलो
1: जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? राहत
2: जी जी आ रही है, आ रही है. आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक ठाक. फर्स्ट क्लास, आप सुनाए कैसी हैं?
2: मैं रेखा बाजी का कह रही थी, मैं 2 बजे आऊंगी. हम 9 बजे शो शुरू करेंगे.
1: नहीं, इससे मुझे तो नहीं बताया कि 9 बजे आएगी. लेकिन ठहरे, मैं आपके सामने इसको मैसेज कर देता हूँ. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. राहत इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन है. मुझे ये बताएं, राहत कह रही है कि आपने कल अनाउंस किया था कि हम 9 बजे शो करेंगे, मुझे तो बताया नहीं आपने. मैं तो 8 बजे का आके शो कर रहा हूँ, बैठा हुआ यहाँ पे. आ जाए जल्दी से. बस फिर इसका मतलब है वो थोड़ा सा आएंगी, टाइम लगेगा उनको. नो प्रॉब्लम, नहीं नहीं, अब ट्रैफिक का मसला नहीं है. अब ये मसला दूसरा निकल आया, आपने बता दिया मुझे.
2: नहीं तो नहीं, आपकी बात ना, आप भी कल कह रहे थे कि हम टाइम चेंज करें, कल बात की थी ना आपने.
1: नहीं, मैंने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि हम टाइमिंग चेंज करेंगे.
2: तो फिर जब रिबेका ने बोला कि 9 बजे आएंगे, तो मैंने कहा शायद आपकी आपस में हो गई है कोई बात.
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये मुझे
2: वैसे आदतन आज के बाद लगाया.
1: अच्छा, मुझे ना रिबेका ने लास्ट शो में कहा था कि आज का शो जो है वो हम कर लेते हैं. एक मिनट ठहरे, फ्रॉम टुमारो तो नहीं लिखा हुआ इसने मुझे, मैं देख लूँ. फॉर टुमारो लिखा है कि फ्रॉम टुमारो लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो बड़ा रोला हो जाएगा फिर बाद में. वो फिर पता ना कितना रोला डालती है जी. हेलो, टुमारो आई विल कम एट 9, सो विल डू शो एट 9, ये इसने मुझे कहा था पिछले हफ्ते. तो आज तो मुझे कुछ भी नहीं बताया उसने, पिछले हफ्ते की बात है. बहरहाल चले, कोई बात नहीं, आ जाएंगी. आप सुनाएं कैसी हैं, क्या चल रहा है जिंदगी में? बस बेहतरीन. आपने सुनी हमारी ट्रांसमिशन एनिवर्सरी की? अरे थैंक यू सो मच. आए हाय हाय, क्या बात है, बहुत शुक्रिया. सोशल मीडिया पे जाके लिखा करो. आपकी आपकी मैंने कॉल रिकॉर्ड नहीं की हुई थी ना?
2: हाँ नहीं, कॉल नहीं रिकॉर्ड की थी, नहीं तो फिर मैंने किसी क्या दिल बतौर की फोटो लगा ला गल मोक दी.
1: अच्छा, नहीं नहीं, मैं
2: बाद में पूछते चलेंगे.
1: नहीं, मैं जो है वो अब आपकी वैसी फोटो बना के लगा दूंगा. ठीक है, राहत बानो मौसम और डीजे साइलम दोनों इकट्ठे होंगे उसमें. ठीक है,
2: थैंक यू सो मच,
1: बहुत शुक्रिया.
2: ठीक ठाक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त.
2: चल,
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर कॉल. अल्लाह हाफिज. हमारे साथ मौजूद थी राहत बानो, बात करके इनसे बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा. सो हियर वी गो, एक और कॉल. हेलो हेलो, शुक्रिया आपने एफएम 101 ट्यून किया, नो प्रॉब्लम. एक और कॉल. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. यार ये फिर वही वाला मसला आ रहा है, रात की कॉल मिल गई. अब देखें बाकी लोग किस तरह बेचारे परेशानी का सामना कर रहे हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. कॉल क्रैश हो रही है, इश्यू बन रहा है. नेवर माइंड, मैं इसे चेक करवा लेते हैं, गाना शामिल करते हैं, उसके बाद लौट के वापस आएंगे. सो रहिएगा हमारे साथ साथ. द ट्रैक व्हिच आई एम गोइंग टू प्ले फॉर यू गाइस, रियली सुपर मजेदार गाना प्ले कर रहा हूं. और वो गाना जो है वो है ये वाला. ये गाना मेरे पास एक अरसे से पड़ा हुआ और इसकी रिक्वेस्ट आया करती थी एक जमाने में बहुत ज्यादा, लेकिन मैं इसे बहुत कम प्ले करता था. सो हियर वी गो, आज मैं प्ले कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा ये गाना राहत के.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह, चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की, कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
3: FM 101 FM 101 FM 101 FM 101 101 101

0: Smile and dial 111-111-FM.
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
3: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
2: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
4: आप सुन रहे हैं FM 101।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। वजीर आजम ने आम लोगों पर ईंधन की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए फ्यूल सब्सिडी स्कीम जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। वजीर खजाना ने कहा है कि हुकूमत टैक्स की तरीकाकार को आसान बनाने की कोशिशें कर रही है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 बैन अलावामी मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा।
1: This is FM 101.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक म्यूजिक
2: वी विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक स्टे विद अस.
3: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब. ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है. अल्हम्दुलिल्लाह, चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज.
4: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है. 60 मिनट्स से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती.
3: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है. ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं. 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं. हुकूमत पंजाब.

0: Big socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह, चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
4: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की, कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
3: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का अखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
5: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए फ्यूल सब्सिडी स्कीम जारी रखने का आज़म जाहिर किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि हुकूमत टैक्स का तरीक़ाकार आसान बनाने की कोशिश कर रही है। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने यूक्रेन तनाज़े में कशीदगी में कमी लाने पर जोर दिया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 बैन अलावा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर। ट्यून इन टू एफएम 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है 60 मिनट से 120 मिनट का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं हुकूमत पंजाब
3: FM 101 FM 101 FM 101 FM 101 101 101 101

आऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा। मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।

0: Hey, we'll be back after this short commercial break.
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
3: आप सुन रहे हैं FM 101।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का अखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
3: Tune in to One Above FM 101.

0: to One Above FM 101.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा।

0: We'll be back after this short commercial break.
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट्स से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।

0: This is FM 101.
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह, चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की, कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
3: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade kyun ji koi shak hai kya

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है 60 मिनट से 120 मिनट का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं हुकूमत पंजाब
3: दिस इज FM 101

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने मुल्क भर में ज़ियाबीतस की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली वजा करने की हिदायत की है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तआवुन से सनअती तरक्की को फरोग देने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में मकबून दास खुसूसी इक्तिसादी जोन कायम किया जा रहा है। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इदारों ने इंडोनेशिया में आलमी टेक्नोलॉजी की एक तकरीब में 11 शोबों में एजाजात हासिल किए हैं। और अमरीका ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में भारतीय हुकूमत की नाकामी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है 60 मिनट से 120 मिनट का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं हुकूमत पंजाब
3: दिस इज FM 101

0: ました。
1: This is FM 101.
2: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
3: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
2: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
1: दिस इज FM 101.

0: किया।
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट्स से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का अखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
3: सुनते रहिए FM 101।

0: जाने पे फायदा दे।
1: दिस इज FM 101.1
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह, चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101।
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बड़वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is FM 101.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा।

0: फायदा दे।
1: दिस इज FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.
4: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
5: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
4: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is FM 101.
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की, कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कान 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।

0: पे फायदा दे।
1: देपक, आज ही अपने बैंक से बनवाए।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: सुनते रहिए FM 101. 101.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब वजीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज
2: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है 60 मिनट से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती
1: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है ब्रेस्ट कैंसर की बड़ वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं हुकूमत पंजाब
0: And now you are tuned into
3: FM 101
4: FM 101
5: 101 101 101 101

0: This sucks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101
3: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
4: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
3: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बड़वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
0: स्माइल एंड डायल 111-111-FM।
5: This is FM 101.
6: पाकिस्तान च हर्बल इलाज नू फरोग देन वाले अजीम तिब्बी इदारे दवाखाना प्रोफेसर सुलेमान वालों प्रोग्राम दी मेजबान साइमा तुहाड़े सारयां दी खिदमत च पुरखलूस दुआवां ते सलाम दा हदिया पेश कर दिए। सोहणे भैण भराओ, साडी इह दुआ है कि सोहणा रब तुहानू सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए ते तुसीं अपने खानदान दे नाल खुशहाल जिंदगी गुजारो। लेकिन सोहणे भैण भराओ, जदों तिकर जिंदगी है बंदे नूं दुख सुख वांगू बीमारी दा भी सामना करना पैंदा है ते जदों बंदा बीमार होवे उहनूं सब तों पहलां इलाज वल तवज्जो करनी चाहीदी है क्योंकि इलाज तखीर बीमारी नूं पेचीदा कर दिंदी है। फिर एक तों बाद दूजी ते दूजी तों बाद तीजी बीमारी ते जिंदगी नूं रोग ला दिंदी है। मेरे सोहणे भैण भराओ, हुण तुसीं सोचोगे कि पक्का ते मुस्तकिल इलाज कित्थों कराईए ते जनाब सोचण ते परेशान होण दी कोई गल नहीं क्योंकि साडे मुल्क च मौजूद ने बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता तबीब जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब। लिहाजा तुसी अपनी पहली फुरसत च पाकिस्तान दे मन्ने तन्ने तबीब जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब नूं मिलो जिहदे लई दवाखाने दा पता बड़ी तवज्जो नाल नोट फरमाओ ते लिखो। सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान मेन रावी रोड लाहौर। फोन नंबर 042-377-27160 यानी 042-377-27160। मोबाइल नंबर है 03-400-414-2608 यानी 03-400-414-2608। ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com। जी सोने भैन भरा, तुहाडी मेजबान साइमा हुण तुहाडी मुलाकात करांदी है पाकिस्तान तिब्बी फाउंडेशन दे सरबरा यूनानी मेडिकल कॉलेज दे साबिक वाइस प्रिंसिपल ते गोल्ड मेडलिस्ट तबीब जनाब प्रोफेसर

0: And now you're tuned into
1: FM 101.
2: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह, चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
3: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की, कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
2: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का अखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत है। ब्रेस्ट कैंसर की बड़वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: रात के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने आज इस्लामाबाद में एक मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने मुल्क के तमाम हवाई अड्डों पर स्मार्ट स्कैनर्स फौरी तौर पर नस्ब करने की हिदायत की है। कौमी इक्तसादी कौंसिल की इंतजामी कमेटी ने मुख्तलिफ शोबों में 11 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी है। वजीर इत्तिलात ने कहा है कि गुज़श्ता 13 साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की यके बाद दीगरी हुकूमतों ने अवामी फलाह व बहबूद की बजाय एहतजाजी सियासत को तरजीह दी है।
2: Always ahead. FM 101.
3: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन हफ्ते महीने साल हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
4: This is FM 101.
5: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने आज इस्लामाबाद में एक मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमू सियासी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने मुल्क के तमाम हवाई अड्डों पर स्मार्ट स्कैनर्स फौरी तौर पर नस्ब करने की हिदायत की है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद शाह को उनकी बरसी के मौके पर शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है फेक, उनके बारे में मेरा है टेक। I don't care what you think, what you mean, what you

0: सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, थक सा और चुप।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

यानी कि राइट मैसेज ऑप्शन में 101 लिखिएगा एक स्पेस के बाद अपना पैगाम, अपना नाम, जगह का नाम और इस मुकम्मल पैगाम को 4471 यानी 4471 पर भेज दीजिएगा। इसके अलावा जनाब facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान वेब एड्रेस है, फेसबुक पर FM 101 पाकिस्तान के ऑफिशियल फैन पेज का, वहाँ चंद लम्हे पहले एक स्टेटस अपडेट हुआ है आतिर अली सैयद और 101 इंटरनेशनल के नाम से, उस पर कमेंट कीजिएगा, प्रोग्राम में शामिल करूँगा और आपकी टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला कुछ देर में शुरू करेंगे 9202540 पर 920254। कोई ऐसी बात, कोई खूबसूरत बात जो आप समझते हो कि समातों तक पहुंचे तो किसी का कोई भला हो सकता है, वो ज़रूर प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। मैं मुंतज़िर रहूँगा ऐसी किसी बात का जो समातों को भाए भी और कुछ बेहतर तब्दीली भी आ सके उससे। जनाब मेरा साथ देते रहिएगा, अपने होने का एहसास दिलाइएगा।

ताज़ा हिकायत है, एक ताज़ा हिकायत है, सुन लो तो इनायत है। एक ताज़ा हिकायत है, सुन लो तो इनायत है। एक शख्स को देखा था तारों की तरह हमने, एक शख्स को चाहा था अपनों की तरह हमने, एक शख्स को समझा था फूलों की तरह हमने। कुछ तुमसे मिलता था बातों में शबाहत में, हाँ तुम सा ही लगता था शोखी में शरारत में, दिखता भी तुम ही सा था दस्तूरे मोहब्बत में, दिखता भी तुम ही सा था दस्तूरे मोहब्बत में। वो शख्स हमें एक दिन गैरों की तरह भूला, तारों की तरह डूबा, फूलों की तरह टूटा, फिर हाथ ना आया वो, हमने तो बहुत ढूंढा, फिर हाथ ना आया वो, हमने तो बहुत ढूंढा। तुम किस लिए चौंके हो, कब कब जिक्र तुम्हारा है, कब तुमसे तकाजा है, कब कब तुमसे शिकायत है। एक ताजा हिकायत है, सुन लो तो

चलो कुछ देर हंसते हैं मोहब्बत पर, इनायत पर, कि बेबुनियाद बातें हैं, सभी रिश्ते सभी नाते जरूरत की जाते हैं, कहीं कोई नहीं मरता किसी के वास्ते जाना, कहीं कोई नहीं मरता किसी के वास्ते जाना, कि सब है फिर लफ्जों का, है सारा खेल हरफों का, न है महबूब कोई भी, सभी सभी जुमले से कसते हैं, चलो कुछ देर हंसते हैं, जिसे हम जिंदगी कहते, जिसे हम शायरी कहते, गजल का काफिया था जो उन्वान नज्मों का, वो लहजा जब बदलता था कयामत खेज लगता था, वक्त से आगे चलता था भला का तेज लगता था, जो साया बन के रहता था, जुदाब उसके रस्ते हैं, जुदाब उसके है रस्ते हैं, चलो कुछ देर रोते हैं, चलो कुछ देर हंसते हैं, चलो कुछ देर हंसते हैं।

कभी किसी टीन की छत पे बारिश की आवाज सुनी हो तो उस मौसीकी को आप महसूस कर सकते हैं। वो सीधा सी टाट के पीछे कच्ची सी एक झोंपड़िया में बर्फीली सी शाम उतरी है। वो सीधा सी टाट के पीछे कच्ची सी एक झोंपड़िया में बर्फीली सी शाम उतरी है। तन्हाई का पल्लू थामे सहमी सहमी कुछ बेचैसी वो कोने में सिमटी है। वो कोने में सिमटी है। टीन की छत पर घुंघरू बांधे छन छन करती वहशत में दीवाना वार बारिश नाचती फिरती है। बारिश नाचती फिरती है। दूर कहीं बादल की गरज में एक मानूस सी आहट है, जिसकी गीली सरगोशी से हर सूचाई वेरानी के काले बादल छटते हैं। काले बादल छटते हैं, सारे सारे साये ढलते हैं वो सीधा सी टाट के पीछे। ये मौसम एक तब्दीली ले आया करते हैं हम इंसानों की जात के अंदर भी। अगर हम खुद को मंसूब रखें कुदरत से, अंदर का मौसम अच्छा हो तो बाहर के तमाम मौसम भाते हैं, फिर उनकी भी भाती है और सूरज की तमाजत भी तकवीयत बख्शती है इंसान को। और ये चीजें, ये मौसम, ये बेजान अशिया इंसान को किसी दौर में ले जाते हैं, कुछ याद करता है। एक माजी होता है जो सामने आन खड़ा होता है, उस माजी में वो मंजर फिर से अपने सामने चलते देखता है। जिन मंजरों से कभी कभी वो महजूज हुआ करता था, जो उसको बहुत भाते थे, या उन मंजरों में जो लोग हुआ करते थे। अक्सर कहा करता हूं कि जब दो इंसान अपनी अपनी राह को चल पड़ते हैं तो उस मकाम पर बहुत कुछ जज्ब हो जाया करता है। और इंसान ऐसे ही हैं, जब किसी मकाम पर पहुंचते हैं दोबारा, ऐसा कोई मकाम, तो वो मंजर सामने आ जाते हैं। कोई ऐसी खुशबू हो, कोई ऐसी मौसीकी हो, कोई ऐसा शेर हो, कोई ऐसी नज्म हो, वो आंखों के सामने एक मर्तबा फिर आए तो इंसान अपने माजी में चले जाया करते हैं। तारीखों से मंसूब करते हैं हम इंसान अपनी जिंदगी के वाकयात को, मौसमों से मंसूब करते हैं, महीनों से मंसूब करते हैं और खुशबुओं से भी मंसूब कर दिया करते हैं। और इस तमाम फलसफे से हट कर भी बारिश तो भाती है ही, खास करके मौसम की पहली बारिश। फिर चाहे वो माजी में लेकर जाए या ना लेकर जाए, उस लम्हे को जी लेना भी बड़ी बात हुआ करती है।

एक ही बारिश बरस रही है चारों जानिब, एक ही बारिश बरस रही है चारों जानिब, बामों दर पर, शजर हजर पर, घास के उजले नरम बदन और टीन की छत पर, शाख शाख में उगने वाले बरगो समर पर। लेकिन उसकी दिल में उतरती मुघम सी आवाज के अंदर जाने कितनी आवाजें हैं, जाने कितनी आवाजें हैं, कतरा कतरा दिल में उतरने फैलने वाली आवाजें, जिनको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन लफ्जों में दोहरा नहीं पाते, जानते हैं समझा नहीं पाते। जैसे पतझड़ के मौसम में एक ही पेड़ पे उगने वाले हर पत्ते पर ऐसा एक समा होता है जो जो बस उसका ही होता है, जो बस उसका ही होता है। जैसे एक ही धुन के अंदर बजने वाले साज और उनकी आवाज, खिड़की के शीशों पर पड़ती बूंदों की आवाज का जादू, खिड़की के शीशों पर पड़ती बूंदों की आवाज का जादू रिमझिम के आहंग में ढलकर सरगोशी बन जाता है और लहू के खुलिए उसकी बातें सुन लग जाते हैं। माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों के चेहरे गड़मट से हो जाते हैं, आपस में खो जाते हैं। चारों जानेब एक धनक का पर्दा सा लहराता है, वक्त का पहिया चलते चलते थोड़ी देर को थम जाता है, थोड़ी देर को थम जाता है। आज बहुत दिन बाद सुनी है बारिश की आवाज, आज बहुत दिन बाद किसी मंजर ने रास्ता रोका है, रिमझिम का मलबूस पहनकर याद किसी की आई है। आज बहुत दिन बाद अचानक आंख यूं ही भर आई है, आंख और मंजर की वसत में चारों जानिब बारिश है, और बारिश में दूर कहीं एक घर है जिसकी एक एक ईंट पे तेरे मेरे ख्वाब लिखे हैं, और उस घर को जाने वाली कुछ गलियां हैं जिनमें जिनमें हम दोनों के साए तन्हा तन्हा भीग रहे हैं। दरवाजे पर कुफल पड़ा है और दरीचे सोने हैं, दीवारों पर जमी हुई काई में छुपकर मौसम हमको देख रहे हैं। कितने बादल हम दोनों की आंख से ओझल बरस बरस कर गुजर चुके हैं, एक कमी सी एक नमी सी चारों जानिब फैल रही है। कई जमाने एक ही पल में बाहम मिलकर भीग रहे हैं, कई जमाने एक ही पल में बाहम मिलकर भीग रहे हैं। अंदर यादें सूख रही हैं, बाहर मंजर भीग रहे हैं, अंदर यादें सूख रही हैं, बाहर बाहर मंजर भीग रहे हैं। आज बहुत दिन बाद सुनी है बारिश की आवाज, आज बहुत दिन बाद किसी मंजर ने रास्ता रोका है, रिमझिम का मलबूस पहनकर याद किसी की आई है। आज बहुत दिन बाद अचानक आंख यूं ही भर आई है।

तेरे दिल में भी दबी कोई तो आतिश होगी, आज आई है फिर से याद तेरी, आज लगता है फिर बारिश होगी, प्लीज कम बैक।

है एक बारिश के रूप कितने, वही है बादल वही घटा है, पाराज क्या है। तमाम कतरे जमीन पे एक साथ आके गिरते हैं, फिर भी सब एक से नहीं है। कि जैसे नगमा बहुत से साजों से मिलके बनता है, और फिर भी तमाम साजों का अपना अपना अलग तशख्खुस है। जैसे पेड़ों के सब्ज पत्ते के सब्ज होकर भी अपनी रंगत के एक हिस्से, फिर भी सब एक से नहीं है। कि जैसे नगमा बहुत से साजों से मिलके बनता है, और फिर भी तमाम साजों का अपना अपना अलग तशख्खुस है।

दरवाजा सा खुल गया हो। शजर, समंदर, पहाड़, वादी, हवा की पायल, उदास तन्हा सड़क, बयाबां की रेत, साहिल, मकान, उनकी छतें, दरीचे और उनके छब्बे, गली की जानिब को खुलने वाली हर एक खिड़की और उसके शीशे, हर एक शय से बरसती बारिश की गुफ्तगू का मजा जुदा है। नया है अल्फाज का चुनाव, निराली बंदिश नवा जुदा है। हर एक से बातें अलग अलग हैं, हर एक से लहजा जुदा जुदा है, हर एक से लहजा जुदा जुदा है।

0: मेरा नाम है आतिर अली सैयद और FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टेशन। 12 बजकर तकरीबन 31 मिनट हुआ चाहते हैं और अब टेलीफोन लाइंस आपके लिए खोल दी गई हैं। नंबर है 9202540920254। इस्लामाबाद रावलपिंडी का सिटी कोड 051 यानी 051। कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातहू
0: जनाब।
1: मोहम्मद शहीद ख्वाजा बराम मुल्तान।
0: ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है जनाब,
1: अल्लाह का शुक्र जी। आपका करम मौला आपको सलामत रखे।
0: बहुत शुक्रिया जी,
1: अच्छा हो।
0: बहुत शुक्रिया जी,
1: आपका अंदाज तखातुब भी बहुत अच्छा है।
0: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।
1: हाँ जी, और शायरी भी बहुत अच्छी लेके आते हैं आप।
0: बहुत शुक्रिया।
1: और मैं भी ऐसे छोटा सा एक शायर हूँ, तो थोड़ा सा
0: जी
1: कलाम है अगर कहें।
0: सुनाइए सुनाइए
1: तो मैं
0: जी, जी सुनाइए हजूर।
1: और है भी सराकी में।
0: ठीक है, सुनाइए सुनाइए।
1: ठीक है सर, मेहरबानी। तेरी मेरी एक मर्जी, एक दूजे तुझे तो आती हूँ। और कलाम भी अपना है मेरा।
0: बहुत अच्छा।
1: हाँ जी, तेरी मेरी एक मर्जी, तो एक दूजे तू जुदा क्यों। तू मैं दी तकरार है, तो मैं तेरे तू फिदा क्यों।
0: अच्छा।
1: मन दे, हाँ जी, मन दे मैलियां दी मैल सोवे आबे रहमत नाल। मन दे मैलियां दी मैल सोवे आबे रहमत नाल। गफार भी है सत्तार भी है, तो ऐब मेरे बेरिदा क्यों।
0: वाह वाह वाह, दोबारा दूसरा मिसरा दोबारा पढ़े।
1: हाँ, गफार ए, मन दे मैलियां दी मैल धोवे आबे रहमत नाल। गफार भी है सत्तार भी है, ता ऐब मेरे बेरी दा क्यों।
0: ओहो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुझे बोलने नहीं आती लेकिन समझ आ रही है मुझे।
1: बस यही है कि जरा समझ आ जाए। बाकी सराकी उर्दू भी है मेरे पास।
0: बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा लिखा आपने।
1: हाँ, ये था अरफाना कलाम, तो मैंने कहा यही पहले सुना दूं आपको।
0: अच्छा, बहुत अच्छा।
1: फस गई फस गई दुखां दे भंवरे च कश्ती मेरी बका दी। फस गई दुखां दे भंवरे च कश्ती मेरी बका दी। डुब वञन अरमान मेरे, तां तू मेरा ना खुदा क्यों।
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
1: हाँ,
0: बहुत खूबसूरत
1: ये
0: है।
1: जरा सराकी है, ठेक थोड़ी सी आ जाएगी बहरहाल समझ।
0: हाँ, समझ मुझे आ
1: इश्क
0: रही है।
1: दी राह, हाँ, इश्क दी राह सिर कुटे ते अखी तू खून उठे। ये फकीर करबला पहुंच गया है। इश्क दी राह सिर कुटे ते अखी तू खून उठे। सिर दे हुण मेराज इश्क दी, ते दुखां दी सजा क्यों।
0: बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सलामत रहे।
1: हाँ जी,
0: बहुत अच्छा जी।
1: मेहरबानी जनाब, इज्जत दी भा गुलजार करे ते धांबड़ बल्ले सईद विशाल दा। इज्जत दी भा गुजार करे ते धांबड़ बल्ले सईद विशाल दा। गुजरान थींदी ए दुखण नाल, दरिया दी गदा क्यों।
0: बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सलामत
1: रहे,
0: सलामत।
1: और एक छोटा सा है, वो एक मिनट का ही है,
0: जी जी
1: वो मैं
0: सुना।
1: जरा आपके गोश गुजार कर दूं। जमन में जो भी मौला अली का गुलाम हो जाए, खुल्दे बरी में मुस्तकिल उसका क्याम हो जाए।
0: बहुत अच्छा।
1: अश्क बरसे जिन्ना

0: एक और कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ऊंचा बोले हुजूर, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता है जनाब।
1: जी मैं वकास बात कर रहा हूँ सिंध से।
0: ठीक है, कैसे हैं आप? ठीक है
1: जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: क्या कहेंगे?
1: मैं फिलहाल तो कुछ भी नहीं कहेंगे। रात के इस पहर में बस आपने सजाद अली का सॉन्ग चला के किसी की याद अदा करवा दी।
0: ठीक है।
1: हाँ बस यही है कि प्रोग्राम आपका अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक से सुन रहे हैं,
0: ठीक है।
1: और तमाम लिसनर्स को हमारा सलाम बस इतना ही
0: वालेकुम
1: कहना
0: सलाम।
1: चाहेंगे।
0: सलामत रहें जी, सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत
1: शुक्रिया
0: शुक्रिया।
1: जनाब।

वो शब के साए में फसलें निशात काटते हैं, वो शब के साए में फसलें निशात काटते हैं, हम अपनी जात के हुजरे में रात काटते हैं, हम अपनी जात के हुजरे में रात काटते हैं। वो शब के साए में फसलें निशात काटते हैं, हम अपनी जात के हुजरे में रात काटते हैं। अजीब लोग हैं इस अहदे बे मुरव्वत के, अजीब लोग हैं इस अहदे बे मुरव्वत के, जबान काट ना पाए तो बात काटते हैं। और ये लम्हा अहले मोहब्बत पे सख्त भारी है, ये लम्हा अहले मोहब्बत के साथ काटते हैं। थकन से पूरा बदन चूर चूर होता है, पहाड़ काटते हैं हम के रात काटते हैं। ये रंग लेके कहां आ गए हो तुम अजहर, यहां तो लोग मुसव्विर के हाथ काटते हैं, यहां तो लोग मुसव्विर के हाथ काटते हैं। अजीब लोग हैं इस अहदे बे मुरव्वत के, जबान काट ना पाए तो बात काटते हैं। कॉलर शामिल करते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया जी,

वो मौसीकी जो कानों में रस घोलने लग जाती है, वो बज नहीं रही होती, बस हमें हमें सुनाई दे रही होती है। उस मुकफ्फल कमरे को खोल लेने के बाद, उस फजा के मुअत्तर हो जाने के बाद, वो मंजर सामने चलने लग जाते हैं। कुछ ऐसे लम्हे हमारी जिंदगी में बीतते हैं जिनको हम मुंजमित करना चाहते हैं। जब यह ख्वाहिश हुआ करती है कि सब कुछ ठहर जाए यहां पर, वो वक्त रुक जाए, हम उन लम्हों को, उन जज्बों को बहुत देर तक महसूस करना चाहते हैं, लेकिन न जाने क्यों ऐसे लम्हे पलक झपकते बीत जाते हैं। और वो लम्हे जो हमारे मिजाज पर ग्रां गुजरते हैं, वो लम्हे सदियों पर मुहित हो जाया करते हैं। लेकिन बस वो एक लम्हा ही काफी हुआ करता है उन लोगों के लिए जो मोहब्बत करने वाले हुआ करते हैं और बस उसको महसूस कर लिया करते हैं जब चाहें आंखें बंद करके, ऐसे किसी मौसम में, ऐसी किसी फरागत में। जैसे कि हम थे, हमारे साथ कोई तीसरा ना था, ऐसा हसीन दिन कहीं देखा सुना ना था। आंखों में उसकी तैर रहे थे हया के रंग, पलकें उठा के मेरी तरफ देखता ना था। कुछ ऐसे उसकी झील सी आंखें थी हर तरफ, कुछ ऐसे उसकी झील सी आंखें थी हर तरफ, हमको सिवाय डूबने के रास्ता ना था। हाथों में देर तक कोई खुशबू बसी रही, दरवाजा है चमन था वो बंदे कब आना था। सांसों में थे गुलाब तो होंठों पे चांदनी, इन मंजरों से मैं तो कभी आशना ना था। उसके तो अंग अंग में जलने लगे दिए, जादू है मेरे हाथ में मुझको पता ना था। और रोया कुछ है इस तरह मेरे शाने से लग के, वो ऐसे लगा कि जैसे कभी बेवफा न था। है इश्क एक रोग, मोहब्बत अजाब है, एक रोज ये खराब करेंगे कहा न था। अमजद वहां पे हद कोई रहती भी किस तरह, रुकने को कह रहा था मगर रोकता न था। हम थे, हमारे साथ कोई तीसरा न था, ऐसा हसीन दिन कहीं देखा सुना न था।

मिले तो हम आज भी हैं लेकिन न मेरे दिल में वो तिश्नगी थी कि तुझसे मिलकर कभी न बिछड़ूं, ना आज तुझ में वो जिंदगी थी कि जिस्मों जा में उबाल आए, न ख्वाब जारों में रोशनी थी, न मेरी आंखें चिराग की लो, न तुझ में ही खुद सुपुर्दगी थी, न बात करने की कोई ख्वाहिश, न चुप ही में खूबसूरती थी, मुजस्मों की तरह थे दोनों, न दोस्ती थी न दुश्मनी थी, मुझे तो कुछ यूं लगा है जैसे वो साथें भी गुजर गई हैं, कि जिनको हम लाजवाल समझे वो ख्वाहिशें भी तो मर गई हैं, जो तेरे मेरे लहू की हिद्दत को आखिरिश बर्फ कर गई हैं। मोहब्बतें शौक की चट्टानों से घाटियों में उतर गई हैं, वो कुर्बतें वो जुदाइयां सब गुबार बनकर बिखर गई हैं। अगर ये सब कुछ नहीं तो बतला वो चाहते अब किधर गई हैं, वो चाहते अब किधर गई हैं।

फैज साहब कहते हैं कि इस वक्त तो यूं लगता है अब कुछ भी नहीं है। इस वक्त तो यूं लगता है अब कुछ भी नहीं है। महताब ना सूरज, ना अंधेरा, ना सवेरा, आंखों के दरीचों पे किसी हुस्न की चिलमन, और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। मुमकिन है कोई वहम था, मुमकिन है कोई वहम था, मुमकिन है सुना हो गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा। शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद अब आके करेगा ना कोई ख्वाब बसेरा। एक बेर ना एक महर, ना एक रब्त, ना रिश्ता, तेरा कोई अपना ना पराया कोई मेरा। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है। हिम्मत करो जीने की तो एक उम्र पड़ी है, हिम्मत करो जीने की तो एक उम्र पड़ी है। जी हजूर, ऐसा ही है। हम इंसानों के पास ऐसी बहुत सी उम्मीदें हुआ करती हैं जीने के लिए। ये जिंदगी जो हमें मयसर आ जाती है और इसको जीना ही होता है, ये जैसी भी है। जैसे कि पहले जिक्र किया कि सबके हिस्से में एक सा वक्त आता नहीं है। ये यूं कहिए कि कोई एक शय जो किसी इंसान को महसूस कर रही होती है, वो किसी दूसरे इंसान के लिए तकलीफ का बाइस भी हुआ करती है। हम इंसान अपने अपने हिस्से का वक्त गुजारने आते हैं इस दुनिया में। जब हम कभी हसरत किया करते हैं कि हमें ऐसी जिंदगी मिल जाए, या किसी की जिंदगी को देख के हम हसरत किया करते हैं, तो यकीन कीजिए कि किसी का गुजारा हुआ एक दिन भी हम नहीं गुजार सकते।

ये लम्हे और ये वक्त हर इंसान का अपना अपना है। इंसान जो इस दुनिया में आता है और ऐसी बहुत सी उम्मीदें उसके साथ साथ हुआ करती हैं जो उसको जीने पर मजबूर करती हैं या उसको जीना सिखा दिया करती हैं। इस दुनिया में जितने रंग हैं, जितनी आराइशें हैं, जितनी आसाइशें हैं, ये सब इंसान का हौसला बढ़ाने के लिए हैं। जब कभी वो मुजमहिल हो जाए, जब कभी थोड़ा टूट जाए, जब मुजतरिब महसूस कर रहा हो, तो कोई ऐसी चीज उसके सामने आ जाए जो एक उम्मीद की किरण हो, जो एक हौसला हो उसके लिए। यानी कि कुदरत इंसान को आगे बढ़ाना चाहती है और जो कुछ जिंदगी में रोनुमा होता है वो शायद आजमाइशें हुआ करती हैं। अगर देखा जाए तो जो मैं कह रहा हूं, एक तरह से इसको लफाजी भी कहा जा सकता है। हम इंसानों के पास और है भी क्या, अल्फाज हुआ करते हैं और इन अल्फाज को हम अदा करते हुए अपने जहन के नेहा खानों में कहीं इनके मतलब समझने की काविश में वही उम्मीदें निकाल रहे होते हैं इनसे। हकीकत आशना होना चाहते भी हैं हम इंसान और कई हकीकतें ऐसी भी हुआ करती हैं जिनको तस्लीम नहीं कर पाते हैं हम। मैंने माना जुदाई मेरा मुकद्दर है, मैंने माना जुदाई मेरा मुकद्दर है, मगर ये बात ना मुंह से कहो खुदा के लिए। कई हकीकतें ऐसी हुआ करती हैं जिनको हम इंसान तस्लीम तो कर लिया करते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते, दोहराना नहीं चाहते। हम उनसे नजरें चुराने की काबिश में हुआ करते हैं। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। लेकिन ये क्या जहन है जो माजी को सामने लान खड़ा करता है। जैसा कि पहले कहा, बहुत सी बेजान अशिया हुआ करती हैं जो माजी को सामने ले आती हैं, कुछ याद आ जाया करता है उन्हीं रास्तों ने जिन पे कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। और कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूं गुजर गए जिन्हें देख के ये तड़प हुई तेरा नाम लेके पुकार लूं। कुछ ऐसे जुमले, कुछ ऐसे वाकयात मुनक्कश हो जाया करते हैं हमारे वजूद के अंदर जिनको हम मिटाना चाहें भी तो नहीं मिटा पाते हैं। और फिर वही बात कि जब कोई ऐसी रात, कोई ऐसा मौसम, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसी खुशबू, कोई ऐसी मौसीकी, ऐसा कुछ भी जो मंसूब हुआ करता है उन लम्हों से हमारे सामने आता है तो सब कुछ तरोताज़ा हो जाता है। और फिर ताज़ा सिर्फ वो लम्हे नहीं हुआ करते जो हमें पसंद हुआ करते हैं या जो हमारी मर्जी के हुआ करते हैं, एक अहद ताज़ा हो जाया करता है। और उस अहद में बहुत कुछ ऐसा भी हुआ करता है जो हमारी तबीयत पर गरां गुजरा था, जो ना चाहते हुए भी रोनुमा हो गया था। बहुत से ऐसे जुमले थे जिनकी कड़वाहट अभी तक महसूस होती है। दो इंसान अपनी अपनी राह को चुनते हुए उस जगह पर, उस मकाम पर, उस जज्बों को छोड़कर चले जाते हैं और उस मकाम पर वो जज्बे, वो एहसासात जज्ब हो जाते हैं। तो जब मकामात पर जज्ब हो जाया करते हैं तो कैसे इंसानों के जहन में और उनके वजूद में ये मफकूद हो सकते हैं, मुमकिन नहीं है। चाहें भी तो छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हैं, खास करके उन लम्हों से, उन यादों से जो कभी जिंदगी हुआ करती थी।

चलो फिर खुद को ढूंढें, आजाद के नज़ारे की कोशिश करें। देखो वो भूरा दश्ते का दूर तक फैला हुआ है, सामने हद नजर तक गहरी तारीकी की नागन रक्स फरमा है। बिखरती रेत पर कोई भी नक्शे पा नहीं है, बिखरती रेत पर कोई भी नक्शे पा नहीं है। ऐसे नक्शे पा ढूंढते ढूंढते इंसान एक जिंदगी गुजार दिया करता है। उन चंद साहतों की तलाश में कितने ही दर्द हैं जो महसूस करता चला जाता है, जो बर्दाश्त करता चला जाता है। और फिर यूं भी कहता है कि दर्द कम होने लगा आओ के कुछ रात कटे, दर्द कम होने लगा आओ के कुछ रात कटे, गम की मियाद बढ़ाओ के कुछ रात कटे। हिजर में आहो बका रस्में कौन है, लेकिन आज ये रस्म ही दोहराओ के कुछ रात कटे। दिल दुखाता है वो मिलकर भी, मगर आज की रात उसी बेदर्द को ले आओ के कुछ रात कटे, उसी बेदर्द को ले आओ के कुछ रात कटे। यूं हर तरह का दर्द हर तरह की तकलीफ भी कबूल हुआ करती है, क्योंकि दास्ताने गमे दिल उनको सुनाई न गई, बात बिगड़ी थी कुछ ऐसी के बनाई न गई। सबको हम भूल गए जोशे जनू में, लेकिन एक तेरी याद थी ऐसी जो भुलाई न गई। होते हैं कुछ ऐसे चेहरे कुछ ऐसे नकोश जो नहीं मिटते हैं, जो नहीं भूल पाते हैं। दयारे दिल की रात में चराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया, वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया। जुदाइयों के जख्म दर्द जिंदगी ने भर दिया, तुझे भी नींद आ गई मुझे भी सब्र आ गया। लेकिन इस सब के बावजूद वो गम बड़ा होता है, दर्द बड़ा होता है जब तक कि इंसान उस दर्द से उस गम से बड़ा ना हो जाए। सदियों से राह तकती हुई घाटियों में तुम एक लम्हा आके हंस गए, मैं ढूंढता फिरा। सदियों से राह तकती हुई घाटियों में तुम एक लम्हा आके हंस गए, मैं ढूंढता फिरा। उन वादियों में बर्फ के छींटों के साथ साथ हर सू शरर बरस गए, मैं ढूंढता फिरा। रातें तराइयों की तहों में लुढ़क गईं, दिन दलदलों में धस गए, मैं ढूंढता फिरा। राहें धुएं से भर गईं, मैं मुंतजर रहा। राहें धुएं से भर गईं, मैं मुंतजर रहा। करनों के रुख झुलस गए, मैं ढूंढता फिरा। और तुम फिर ना आ सकोगे, बताना तो था मुझे, तुम फिर ना आ सकोगे, बताना तो था मुझे। तुम दूर जाके बस गए, मैं ढूंढता फिरा। तुम दूर जाके बस गए, मैं ढूंढता फिरा। सदियों से राह तकती हुई घाटियों में तुम एक लम्हा आके हंस गए, मैं ढूंढता फिरा।

ज्यादा सदे दिल भर माही मैं तो यार बुलाया जाता नहीं सिर रख के यार दे कदमा विच

ज्यादा से दिल भर माही हूं मैं तो यार बुलाया जाता नहीं सिर रख के यार दे कदमा विच सिर फेर

का किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ। हाँ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, उम्र गुजरी तुझे देखे हुए बहलाए हुए। हाँ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, उम्र गुजरी तुझे देखे हुए बहलाए हुए। याद है हम तुझे दिल मानते थे, अपने सीने में मचलता हुआ जिद्दी बच्चा। तेरे हर नाज को उंगली से पकड़कर अक्सर नित नए ख्वाब के बाजार में ले आते थे। तेरे हर नखरे की फरमाइश पर एक जीवन के तमन्नाओं की बिनाई से हम देखते थकते ही न थे, हम देखते थकते ही न थे। सोचते थे एक छोटा सा नया घर नया माहौल मोहब्बत की फजा हम दोनों, और किसी बात पर तकियों से लड़ाई अपनी, फिर लड़ाई में कभी हंसते हुए रो पड़ना और कभी कभी रोते रोते हंस पड़ना, और थक हार के गिर पड़ने का मासूम खुशबख्श ख्याल याद है। याद है हम तुझे सुख जानते थे, हम तुझे सुख जानते थे। रात हंस पड़ती थी बेसाख्ता दर्शन से तेरे, दिन तेरी दूरी से रो पड़ता था। याद है, याद है हम तुझे जहां कहते थे, तेरी खामोशी से हम मर जाते, तेरी आवाज से जी उठते थे। तुझको छू लेने से एक जिंदगी आ जाती थी शरियानों में, थाम लेने से कोई शहर सा बस जाता था वीरानों में। याद है, याद है हम तुझे मिलने के लिए वक्त से पहले पहुंच जाते थे, और मुलाकात के बाद बहुत देर से घर आते हैं, बहुत देर से। बहुत देर से घर आते तो कहते कि हमें कुछ ना कहो, हम बहुत दूर से घर आए हैं, इस कदर दूर से आए हैं कि शायद ही कोई आ पाए। याद है, याद है हम तुझे भगवान समझते थे मगर कुफ्र से डर जाते थे, तेरे छिन जाने का डर ठीक से रखता था मुसलमान हमें। हाँ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, तेरे भूले हुए रस्तों पे लिए फिरता है ईमान हमें और कहता है कि पहचान हमें। याद है हम तुझे ईमान कहा करते थे, हम तुझे ईमान कहा करते थे। आ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, उम्र गुजरी तुझे देखे हुए बहलाए हुए।

दिल वो प्यासा है कि दरिया का तमाशा देखे और फिर लहर ना देखे कफे दरिया देखे। मैं हर एक हाल में था गर्दिशे दोरा कामी, जिसने दुनिया नहीं देखी मेरा चेहरा देखे। अब भी आती है तेरी याद पर इस कर्ब के साथ, टूटती नींद में जैसे कोई सपना देखे। रंग की आंच में जलता हुआ खुशबू का बदन, आंख इस फूल की तस्वीर में क्या क्या देखे। और कोई चोटी नहीं अब तो मेरे कद से आगे, ये जमाना तो अभी और भी ऊंचा देखे। फिर वही धुंध में लिपटा हुआ पैकर होगा, कौन बेकार में उठता हुआ पर्दा देखे। एक एहसास से नदामत से लरज उठता हूं, जब रमे मौज मेरी वुसते सहरा देखे। मैं हर एक हाल में था गर्दिशे दोरा कामी, जिसने दुनिया नहीं देखी मेरा चेहरा देखे।

0: वो ख्वाब है कि हकीकत ये देखने के लिए हम आज उसको हर एक जाविये से देखें।
1: बहुत अच्छा जी।
0: मक्ता मुलायजा कीजिएगा, देखिएगा और पहुंचेगा इस बात तक के वो जिंदगी है तो फिर जिंदगी को हम नासिक।
1: वो जिंदगी है तो फिर जिंदगी को हम नासिक।
0: वो जिंदगी है तो फिर जिंदगी को हम नासिक, किसी से छुपके नहीं सामने से देखते हैं।
1: बहुत अच्छे। वो तेरी गली के तेवर, वो नजर नजर पे पहरे, वो मेरा किसी बहाने तुझे देखते गुजरना।
0: देखना आपने कितने खूबसूरत बात की, आपने तेवर बात की ना, तेवर तो गजल में भी तो तेवर ही होते हैं ना।
1: ऐसा ही है।
0: खुश रहे, गाँव में याद रखिए,
1: सलामत रहिए, आबाद रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।

जी हाँ जनाब, जो बात शुरू हुई थी वो कहीं तक पहुंच चुकी थी, या पहुंचाना चाहेंगे। क्या है कि बेरब्त बातें हुआ करती हैं और कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाता है उन बातों को। एहसास और मौसम और जज्बात और फिर इंसान का माजी और हाल में इंसान उस माजी को याद करता हुआ। एक तरह से देखें तो ये बातें शायद यूं लगती हैं कि अब इस अफरा तफरी के दौर में कौन अपने माजी को याद करता होगा। लेकिन चले रहने दें। कैसे है कि ये नज्म बयान कर देगी।

मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सा पागा मा पागा सारे। वो तबले की तरकट पे तक दिन धनक दिन तनक दिन धना दिन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया था, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई थी। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितनी कलियां बलाबल गवैयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गई थीं। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजर रह गए कि हमारे कदम फिर से चलने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पर पलट कर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पर अपनी तिरछी लकीरों को खम दे सके, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटे जियोमेट्री को जन्म दे सके। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू जो नहीं है, तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों में से कोई डिविंची उठे। कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डिविंची उठे। कैसे हस्पानिया में पिकासो बने। उनकी आंखों को तू जो मयसर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक जमा में, हर एक इल्म फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताजा नहीं है। कोई एक चेहरा भी ताजा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है।

किसी ध्यान के किसी ताक पर है धरा हुआ, किसी ध्यान के किसी ताक पर है धरा हुआ वो जो एक रिश्ता है दर्द था मेरे नाम का तेरे नाम से, तेरी सुबह का मेरी शाम से, वो जो एक रिश्ता है दर्द था, किसी ध्यान के किसी ताक पर है धरा हुआ वो जो एक रिश्ता है दर्द था मेरे नाम का तेरे नाम से, तेरी सुबह का मेरी शाम से, सरे राह गुजर है पड़ा हुआ वही खाबे जा, जिसे अपनी आंखों से देख लेने के वास्ते कई लाख तारों की सीढ़ियों से उतर के आई थी कहकशा, सरे आसमा किसी अब्र पारे की ओट से उसे चांद तकता था रात भर, मेरे हम सफर उसी रख्त गम को समेटते, उसी ख्वाब जहां को संभालते, मेरे रास्ते कई रास्तों में उलझ गए, मेरे रास्ते कई रास्तों में उलझ गए, वो चिराग जो मेरे साथ साथ थे बुझ गए, वो जो मंजिलें किसी और मंजिले बेनिशां के गुबारे राह में खो गईं, कई वसवसों के फिशार में शब इंतजार सी हो गईं, वो तनाबे दिल जो उखड़ गई, वो खयामे जहां जो उजड़ गए, वो सफीर थे उसी दास्तान हयात के जो वर्क वर्क थी भरी हुई, मेरे शौक से तेरे रूप से, कहीं छाओं से कहीं धूप से, कहीं छाओं से कहीं धूप से, किसी ध्यान के किसी ताक पर है धरा हुआ वो जो एक रिश्ता है दर्द था मेरे नाम का तेरे नाम से, तेरी सुबह का मेरी शाम से।

मेरा नाम है आतिर अली सैयद और वक्त करीब आन पहुंचा है कि चंद लम्हों में आपसे इजाजत लेनी होगी। और जाने से पहले हमेशा की तरह चंद जुमले जो काविश हुआ करती है कि आपके तवस्सुत से। इंसान पैकर है इन्हीं जज्बों का, एहसासात का। ये जज्बे इंसान की जात के अंदर परवान चढ़ते हैं और कोई ना कोई मकसद हुआ करता है हर जज्बे का। करामत साबित हुआ करते हैं बहुत से एहसासात जो इंसान के साथ साथ चलते हैं, क्योंकि सीखना है इंसान ने यहीं से। उसको जिंदगी गुजारनी है, ये जो वक्त उसको दे दिया गया है। इस वक्त में उसके लिए उम्मीदें भी हैं, उसके लिए हौसले भी हैं, उसके लिए राहें दुश्वार भी हैं, उसके लिए राहें आसान भी हैं। उसको गम भी उठाने हैं, उसको हंस भी उठाना है, बस बढ़ते चले जाना है आगे। और यहां तक कि उसको ये इदराक हो जाए कि ये जो इरादा और इख्तियार में वसत है, दर हकीकत वो एक इम्तिहान है। इम्तिहान ऐसा कि जब इंसान को यह मालूम पड़ता है कि वो कुछ भी कर सकता है तो फिर वो तजावुज करने लगता है। अगर तजावुज ना भी करता हो तो यही नतीजा है कि वो सितारों पर कमंदे डाल रहा है, पाताल तहों तक पहुंच रहा है, सहराओं की खाक छान लिया करता है, समंदरों की गहराई को माप लिया करता है। उसको नजर आता है कि उसके इरादा इख्तियार में वसत है, खुद को मनवाना चाहता है और मनवा लिया करता है, तस्लीम करवाना चाहता है और करवा लिया करता है। लेकिन ऐसा क्या है जो उसको मुज़तरिब रखता है? वो एक तलातुम जो इंसान की जात के अंदर बरपा रहता है, जो उसको चैन से बैठने नहीं देता, जो खुद को एक गिरदाब में महसूस करता है। वो तलाश है एक ऐसी तलाश जो कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होगी इंसान नहीं जांच पा रहा होता, लेकिन अपनी जात के अंदर मुज़तरिब रहता है जब, तो कहीं खोजने पर उसको इसी दुनिया में, इसी कायनात में बहुत से जवाब मिलते हैं। वो इरादा और इख्तियार की वसत को देखता है और फिर अपने इन जज्बों पर नजर डालता है तो मालूम पड़ता है कि वो कितना आजिज है। वो अपने मसाइब पर नजर डालता है तो महसूस करता है कि वो कितना आजिज है। जब कोई अपना उससे जुदा हो जाता है तो वो महसूस करता है कि वो कितना लाचार है। तमाम तर इख्तियारात रखते हुए, इरादे की वसत रखते हुए वो कुछ नहीं कर पाता जब, तो फिर ढूंढने निकलता है कि क्या है ऐसा जो उसकी उसकी जात के अंदर है और कोई आवाज है जो उसको पुकार रही है, जो उसको अपनी तरफ बुला रही है। ये जो रंगीन तबस्सुम की अदा है मुझ में, मुझको लगता है कोई मेरे सिवा है मुझ में। खुद भी हैरान हूं अजल से कि ये क्या है मुझ में, कौन शाहरग से मेरी बोल रहा है मुझ में। तो मालूम पड़ता है कि एक वादा किया था जिसको वफा करना है। जब पूछा गया था अलस्तु बिरब्बिकुम, तो मैंने इकरार किया था कि तू मेरा रब है। और उसी वादे को निभाने के लिए मुझे ये ज़िस्त, ये जिंदगी दी गई, और इसके अलावा कुछ हकीकत थी नहीं, कुछ मिला नहीं खुद को तस्लीम करवा कर भी, कुछ मिला नहीं खुद को मनवा कर भी। वो मुसर्रत और वो इत्मीनान जिसकी तलाश थी, वो कहीं और था। और वो कहीं और कहां था, वो अपनी जात के अंदर था। जब उसको ये समझ आ जाता है कि
यहां होना ना होना है, ना होना एन होना है, तो फिर उसको मालूम पड़ता है कि जितने इख्तियारात हैं इरादे में वो सत है, दर हकीकत ये कुछ नहीं है। यहां होना ना होना है, ना होना एन होना है, तो फिर वो इंसान निकलता है जो सहराओं की खाक छान चुका होता है, जो सितारों पर कमंदे डाल चुका होता है, जो पाताल तहों तक पहुंच चुका होता है। उसको मालूम पड़ता है कि कोई और रास्ता था जो उन्होंने बताया था, और मैं बस खुद को मनवाने में और इबादतों में लगा रहा। वो रास्ता तो कुछ और ही था, जो अनमता लेहिम वालों का रास्ता हुआ करता है, जो सिराते मुस्तकीम है, उस पर चलने वाले वो लोग जो हकीकत आशना हो जाते हैं, जो जिन पर बहुत से राज अफशा हो जाते हैं, जो समझ जाते हैं कि इरादा किस लिए है और इख्तियार किस लिए है, जो सबर के मानी समझ जाते हैं कि जहां बस चल रहा हो, जहां इतना इरादा हो, इतना इख्तियार हो कि दूसरे को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, वहां खुद को रोक लेना सब्र है, वहां नहीं जहां आवाज ही ना उठाई जा सकती हो। तो मालूम पड़ता है कि वो क्यों कहते हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, वो क्यों कहते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, वो क्यों कहते हैं कि कुछ ऐसा अता करूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। वो जो जुलुमात से निकाल कर नूर की जानिब ले जाने का वादा करते हैं और फिर बता भी दिया करते हैं कि अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज, सब कड़ियां जोड़ते जोड़ते मालूम पड़ता है कि हकीकत तो और ही थी कुछ। क्यों उन्होंने इस जिंदगी को चंद लम्हे का खेल तमाशा कहा? वो हकीकी जिंदगी क्या है और वो हकीकी वजूद क्या है इंसान का? तो धीरे धीरे मालूम पड़ने लग जाता है। वो मिलवा दिया करते हैं ऐसे लोगों से जो लोग सिराते मुस्तकीम वाले लोग होते हैं, जो अनमतालेहिम वाले लोग होते हैं, जो उस राह पर चलते हैं और जो ले जाते हैं उस मंजिल तक। जो के जुलमात से बहुत दूर नूर की मंजिल है, जो के नूर है, वो मोहब्बत के करीने और मोहब्बत के तकाजों में से सबसे जरूरी तकाजे को समझ जाते हैं कि महबूब के महबूब को भी चाहा जाए। और जब वो कहते हैं कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तो मैं गौर करता हूं कि इंसान को पुकारते हुए जब वो अपनी करीमी की सिफत का जिक्र कर रहे हैं तो वो बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी मखलूक से। तो कैसे हो सकता है कि मैं उनसे मोहब्बत का दावेदार हूं और उनकी मखलूक से मोहब्बत ना करूं? तो मालूम पड़ता है कि अनमतालेहिम वाले लोग सिर्फ इबादत गुजार लोग नहीं थे, ये वो लोग हैं जो अपने हादसों के दुख छुपाए मुस्कुराते हैं, जो बंजर मौसमों में बारिशों के गीत गाते हैं, जो तितली फूल और खुशबू के मौसम साथ लाते हैं, जो जख्मी फाख्ता को घोंसले तक छोड़ आते हैं, जो बिछड़ी कूंज को फिर डार से वापस मिलाते हैं, उसे तन्हाइयों में मौत के दुख से बचाते हैं, जो शहरे बेवफा में भी क्या वादे निभाते हैं, जो करके हाथ जख्मी राह से कांटे उठाते हैं, वो जिनके हाथ में दिए दुआ के झिल मिलाते हैं, जो अपने नाम से इंसानियत को मोतबर कर दें, मोहब्बत की निगाह ऐसी के जर्रे को गौर कर दें, जो पत्थर खाएं देखें मुस्कुराएं दरगुजर कर दें, जो अपनी जात की परछाई से आगे निकल जाएं,
किसी की आंख के आंसू सितारों में बदल जाएं, वो जिनको देख के सब दर्द के सूरज पिघल जाएं, वो जिनके अपने पांव में कई गिरदाब होते हैं मगर वो रूह की पाताल तक शादाब होते हैं, वो ऐसे लोग जो हर दौर में नायाब होते हैं, अभी वो लोग बाकी हैं, अभी वो लोग बाकी हैं। वो अनमता लहिम वाले लोग, वो सिराते मुस्तकीम वाले लोग कहीं नजर आ जाएं तो बस मेरी यह ख्वाहिश है कि उनके नक्शे कदम पर अपने कदम रखते हुए उस मंजिल तक पहुंच जाऊं जो हकीकी मंजिल है, और मोहब्बत के करीनों को पूरा करते हुए मोहब्बत कर सकूं उनकी महबूब खलकत से। तो जिंदगी में जो दरकार हो वो तकसीम कीजिए, खुशियां चाहिए तो खुशियां बांटिए, आसानियां चाहिए तो आसानियों का सामान पैदा कीजिए, अपनी तकलीफ से राहत चाहिए तो किसी और के पाँव में चुभा हुआ कांटा निकालिए, रब ताला की नेमतों और बरकतों का नजूल होगा आपकी जिंदगी पर। कुछ अच्छा लगा हो तो दस्ते दुआ जब बुलंद होना चीज को याद रखिएगा, और कोई बात समा खराशी का बायस बनी हो तो माजत चाहूंगा। सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह कल शब रात 12 बजे आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आतिर अली सैयद को अब इजाजत दीजिएगा, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।